0: बुधौरा चोक। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 0825903550 र मोबाइल नम्बर 9858043122 र 9858043123।
1: बी एन्ड बी डेन्टल क्लिनिक घोराही 15।